यत हृदय रखा संभाल एक सदगुरु बाहरा त्रिक दिवन संसार जिन नानक सदगुरु तिना मिलायो न जिन सदैव तिनाल महला पंजवा

0: हर संख्या को लुख कराए, जिस बत रखे आप सो पवजल तराए, भगत ज्ञानी तपा जिसके रूपा करे, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तराए, जिसे जराए आप सोई अजर जराए, तिसे मिलिया सच मंत्र गुर मन तराए।
1: जन्म

अनहद बजै सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुकत कत नाहि रहा। जय सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बपार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहि।

निर्मल निर्वाण पद चीन ली जाय। जस रथ राय नंद राजा मेरा राम चांद प्रणवाय। नामा तत् रस अमृत पी जाय। राम कली बाणी रविदास जी की एको अंकार। सतगुर प्रसाद पढ़ीऐ गुणीऐ नाम सब सुनीऐ। अनपौ भाउ न दर्शै लोहा कंचन हिरणोय। कैसे जो पारसै ना परसै।

सब पर हर पास तरी राव। हर हर नाम जपे अराधे, सेवक पाए खरे किल बिख दुख गए सब निकर। ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे पंच दुखे आसाद नगर में। एक खिन पल दूर करे वडभागी, हर नाम ते आवे हर के भगत हरे। तिन की संगत देहो प्रभ जाचो मैं मूढ़ मुग्ध निस्तरै। कृपा कृपा धार जग जीवना रख लेवो शरण परे, नानक जन तुमरी शरणाई।

हर धारी हर किरपले राम हर हर अगमया हर हर अगमया गोचर स्वामी जान जाप मिल सलला सलले हर के संता मिल राम रस पाया हम जन कहे बल बलले पर खोत।

जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखेरा उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजना।

नगे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हाँ बल बल बल ते नगे भवना भवना पवित्रा सब किए जय तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सिवै तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने राम हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुनै किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने

हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपना राम हर तुम वड अगमे अगोचर स्वामी।

रहा हर का ग्रह हर आप सुवारी वर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर अपनी कृपा करी।

आनंदो आनंद पए, हर आवते सुने मेरे लाल, हर लाल जन नानक हर हर पए, जन नानक हर हर मिले पए, गुलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा। मन

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक आनंद पयो। नट महला पंजवा चरण का।

भय बलहारे पाखंड पाखंड कर कर परमे लोभ पाखंड जग बुरियारे हलता पलत दुखदाई हो भय जम काल खड़ा सिर मारे उगवा दिन सवाल जाल समाले बिख माया के बिस थारे आई रहन भया सुपनंतर

कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप।

मिल हर जन हर निस्तारे, ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया, हृदय अंतर हर जन पारे, सरदा सरदा उपा

नित जगरते जगराया हम राख राख दीन तेरे हर सरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वशलनाया प्रहलाद जन हरनाख पकरे हर राख लियो तराया हर चेत रे मन महल पावन।

चरण पराता माली गौड़ा माला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी अर लख गुरु लखायो रहा हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो अर रायो हर हर आन मेल्यो सतगुरु खिन बंध मुक्त करायो प्रभ मस्तके धुर लिखिया गुरमती हर लिव लायो पंच शब्द दरगे बाजे आर हर मिल्यो मंगल गायो पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जूनी जाली है गाली है ज्यो लून जले गलायो मत दे हर प्रभ अगम ठाकर गुर बच गुर चरण मन मै लायो हर राम नामे लहो रहो लागो जन नानक नाम समायो माली गौड़ा महला चौथा।

किन मैं बिनस जाए परतापै डांड धर्म राय का लागा सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी ज्यो रंग मजीठ बहु लागा काया कापर चीर बहु फारे हर रंग न लहे सुभागा हर चार्यो रंग मिले गुर सुभा।

सौ पुरुख निरंजन हर पुरुख निरंजन अर्गमा अगम्य अपारा सब ध्यावै सब ध्यावै तुत जी।

ब्यावद गोई अड़ल सुने गुंजो याहे सुरसना पावई सुने मूड जित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकटना नर के रहाय ओयो याकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहसमन तीन कह जाय भाद्र सुधी अष्टमी रविवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 400 चरित्र समापतम सत शुभम सत अपजू

अपना करो भरत भारा तुम साहे मैं किंकर थारा दा जान दा हाथ उबारो अमरे सबैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मत चरित्रो चारो चू को कबले हो सुधारो कभी भाई दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाए।

पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस गुरु रजले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी बुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने हर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद व्याद शब सके न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुखदावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा।

नाम आधार जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी जत पेखो तत अंतर जमी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज कबीर को स्वामी कबीर को स्वामी हांजे कबीर को स्वामी गरीब निवाज। कबीर जी कहिंदे मेरा मालक कौन है गरीब निवाज मेरा मालक केड़ा है गरीब निवाज जिहड़ा गरीबां नूं नवाजण वाला है जिहड़ा गरीबां नूं बादशाहियां देण वाला है मेरा मालक वो है उस मालक दी हजूरी अंदर बारगा अंदर तुसाने बैठ करके गुरु की अमृत वाणी दा गुर संगत जी आनंद प्राप्त कीता है। गुरु की अपार कृपा है रोजाना लड़ीवार गुरु शब्द नाल सांझ बनदी है। अज दे अमृत बचन आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 432 ते धन गुरु नानक देव महाराज जी दे अमृत बचना दी दात गुरु सवारी संगत जी प्राप्त हुई है। अज दे अमृत बचन पहले पातशाह धन गुरु नानक देव सचे पातशाह जी दी मुबारक रसना तो अमृत बचना दी दात प्राप्त है। आओ गुरु बख्शिश दो।

0: जी की फतेह जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पितर हजूरी जुड़ बैठी साध संगत जी वडभागी आप जी ने संधा च हाजिर बिन गुरु साहब जी कृपा करन समूह संगतां दी हाजिर प्रवान कंदर करो गुरु सिख जीवन नामदान बख्शन। कल एतवार संगरां दा दिहाड़ा है, सवेरे शाम हाजिरी भर के राय प्राप्त करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा, जाम लज्जाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरन पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अभिनासी। ताकी सेव न बिरथी जासी, अनद करह तेरे दासा। जप पूर्ण होई आसा, बिलावल महला पंजवा। ताती वाव न लगई पार, ब्रह्म सरनाई। चौ गिरद हमारा रामकार, दुख लगै न पाई। सतगुर

एक तो ही सहस पाद बिमल नान एक पाद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसदै चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो।

सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठियां सोही है जिस पास बैठियां सोही है।

सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगह मानी प्रभु के सिमरन होए सो भला प्रभु के सिमरन सुबल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सबके सुजय प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृद माए समाए प्रभु जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पर उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे अरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे प्रभु के सिमरन कबू न झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल बिगासन प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सद जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंड जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल कारा हर सिमरन में आप निकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय जय मां भ्यान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक जोन जन्मे मर जाम अनक पुण्य है चन करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत गावे जे मार्गे जात केला तै हर का नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही अनक विघन जय आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जबत पावे विश्राम हो मैला मलकबू न धोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाये साध कह संग जे मार के गन जाए न कोसा हर का नाम असंतोसा

छोरे, जे को जन मरण ते नरे साजना की सरनी परे, जे जन को प्रवदर्स पे असा नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा, जाका मन होय सगल किरीना, हर हर नाम दिन कर कर चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन समिष्टे ता नानक पाप पुन्नी लेपा, निर्धन को धन तेरो नाउन, थामे को नाउ तेरा, थाउन माने को प्रभ तेरो मान।

ते तुम रीत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया में उत्तम किरिया साध संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा। सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन मखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे घट वसे हर नाम। शलोक निर्गुण आरे अन्या सो प्रसा संभाल जिनकिया ते चीत रख नानक निवि नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कम दिष्टानी जिनतू साज सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिने उभारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को दैन एव निर्गुण गुण कशु न बूझे। बख्श लियो तो नानक से जय जय प्रसाद धारो उपर सुख बसे सुत प्रहात मीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मुला। जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग सात बसा दीने हस्त पाप करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़न व्यापै नानक काढ़ लियो प्रव्यापै।

भावे। कहां बजारत बूझे डोरा निज कहिए तो समझे भोरा, कहां बिजनपद गावे गोंग जतन करे तो भी सुर भंग। कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तो आस गवन करतार करना, मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे। सांगसाए सो आवन चीत जो बैराए तासो प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर वसे अंध केल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल नावे, मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह।

कृपा में सुकने रे। कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सरल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रशुड़ कह लागे आन स्वाई।

और उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ते से आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माते उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल आनक भांत माया के हेत सरपर होवत जान हेत बिर की छाया सुमरंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे जो दिशे सो चल नहार लपट रे उतै अंध अंधार मिटाउ से जो लावे ने ताको आत्ना आवे के

क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर कुहरे मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे

जे प्रसाद भूखन पैरी जय मंत्र सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद सब हस्त सवारी मंत्र प्रभु को कबू नाम सारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रवे प्रवे अपने मना जिन तेरी मन मंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक लखे हुआ नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को सास साजदारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद देखे बिस्मा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुन सजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद तुम परमगत पावे जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुसह समावे ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस पाको मूला मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाव जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा सूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू तास राज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गा बाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न वसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए

सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की आचर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुखो जलोद साध संग मल सगली कोद साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग मुझे परम नेरा साध संग समोत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग उच्चर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग यमदरस पुंचा साध संग हो सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतु हुंतावे साध संग अस्तित्व न पावे साध के संग माया ते पहनना साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग मां पुनीत

करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानंग साध के संग सबल जनम साध के संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध के संग कलूक तहरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यहाँ वहां सुहेला साध संग विचरत रमेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मृता जावे पार ब्रह्म साध रद बसे नानक उदरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुंगाओ साध के संग न मनते विसरे साध संग सर्प निस्तरे साध के संग लगे प्रम मीठा साधु के संग घट घट डिडा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा तय गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नहीं अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूंचते मूंची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद ना भाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर्ण पेखे एक सुबिन कोई

सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जे ज्यों बसदा को खो दे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का ए गुनाओ नानक ज्यो पावक का सहज स्वभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन हो प्रकाश जैसे तारे उपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नायो मान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचा मन अपने है सबते नीचा,

दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोड़ मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न। नानक ते जन सदा धन धन, कई कोड़ खाणी अरखंड, कई कोड़ आकाश ब्रह्मंड। कई कोड़ होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोड़ कीने बहुपात, प्रभते हुए प्रभा समात, का अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोड़ पार के दास, तिन होवते आत्म प्रगास। कई कोड़ तत के बेते सदा निहारे, को नेत्रे कई कोड़ नाम रस पीवे, अमर भय सत सत जी जीवे। कई कोड़ नाम गुण गावे, आत्म रस सह समावे, अपने जन को सास सास मारे, नानक परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण करण प्रवे कह, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलियाल ने, जल थल मई हल सोए। अशपरी कर्ण करावण करने जो, जो तिस भावे सोई हो, किनमे थाप थापण हारा, अंत नहीं किश बारा बारा। हुक्मे धार धर रहावे, हुक्मे उपजे हुकुम समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक समे रहा समाए। प्रभ पावे मानुख गत पावे, प्रभ पावे ता पात्र त्रावे, प्रभ पावे बिन सास राखे। प्रभ पावे ता हर गुण भाखे, प्रभ पावे ता बदत उधारे। आप करे आपन विचारे, दुआसरिया का आप स्वामी। खेले विकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर ना आवे। कौ मनुख ते क्या होए आवे, जो तुझ भावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब चले, जो तुझ भावे सोई करे। अनजान बिख्या मैं रचे, जे जानते आपना बचे। पर में पूला दे दिस तावे, ने कुमाए चार कुंड बेरावे। कर कृपा जिसे अपनी भक्त दे, नानक ते जन ना मिले। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवास। जाका दृश्य का सुनावे, दिस तत्काल दे दिस प्रटावे। जा को अपनी करे बख्शीश, ता का लेखा ना गने जगदीश। जियो पिंड सब दिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। अपनी बन ते आप बनाई, नानक जीवे देख वडाई। इसका बल नाई स्रात, करन करावन सर को नाथ। आज्ञाकारी वपरा जियो, जो तिस भावे सोई पुनतियो। कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सोग हर करंग हसै। कबू नंद चंद व्यवहार, कबू वकास प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार। नानक आप मिलावन हार, कबू नृत करे बहुपात, कबू सोय रह दिन रात।

has padit. Jiske antar raj abhiman, so narg bhati yobzwan, jo jane mein jovan bant, so vatavishta ka jante apsko karma bant ka ave, janm mare bhojon parma ave. तान भूम का जो करे गमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकियां मुक्त आगे सुख भावे तनवंता होए कर कर भावे तृण समान किस संग ना जावे मौल अश्कर्मान को पर करे आस बल भीतर दाका होए बिना शब्द आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत किसे न बधे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं दरवे हर दर गए को कैसे गवे आप उसको जो पला कहावे तिसे भलाई निकना आवे सर्व की रेन जा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कसोए तब इसको सुनाई कोए जब वे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता

संत सन जो जन परे सो जने उदर नहार संत के निंदा नानका बोर बोरे अवतार अस्पदी संत के दुखन आर जा कटे संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान पृष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख भवे संतन कह दुखन काग जो लवे संतन कह दुखन सर्व जोन पाए संत कह दुखन त्रिग्ध जोन क्रमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सबको छले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी गाथा को नाए नान संत भावे ता हो भी गत पाए संत का निंदक माताए संत का निंदक किंटक न पाए संत का निंदक माव त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सब जोग संत की निंदा दोख में दोख नान संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुखते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी यद बीजते टूटे संत का दुखी कदे काज ना बहुचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइये संत का दुखी अवजड़ पाइये संत का दुखी अंतर दे थोथा ज्यों सास बना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किशनाएं

हरन भन जाका नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंदरूप मंगल सज्जा के सब थोक सुनिया करता के राज में राज जोग में जोगी तप में तभी सर किस में भोगी।

रूप सत जागा सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जागी बाणी सत पुरख सब माहि समाणी सत कर्म जागी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली।

श्री प्रीत प्रेम रचाओ मंतने अंतरे सुहाओ नेत्रो पेग दर्शको है मन विकसे सा चंतो है भक्त जना के मंतन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मैं आ गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वसल सदा कृपाल नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हाम निर्गुण हर नीच जान नानक तुम्हरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंड मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुंगाए अनक राज भोग बढ़ियाए हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती अरानीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय से पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नान प्रगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही पर जाप अष्टपदी जब आकारे कृष्णा दृष्टे ताप आपन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात वैर विरोध के संकमात जाविस का वर्ण

मोह भरम पै पार दुख सुख मान अवमान प्रकार कियो विख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक के जय अवगत भगत तय आप जय बसरे पसार संत प्रताप दो पाका आपे धनी उनकी शोभा उन बनी।

नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सो मुआ जिस मनो विचारे तेस्ता जवर कहा को जाए सबसे एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब आद अंतर बार जन सात गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर है दयाल सब उपरोवत कृपाल आपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रे ब्या प्रतिपाले जी अनुभव पात जो जो रहे जो जो रचो सो तिसे त्याद जिस भावे तिसे लय मिलाए भगत करे हर के गुंगाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक जान्या जन लगा हर एक कह नाए तिसकी आस न मिथी जाए सेवक को सेवा बनयाए हुकुम बूझ परम पद पाए इसे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंदर पूजे गुरु के पैर ए लोक सुगे परलोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुन गावो पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन हर के गुंगाओ प्राण तरण का ऐसो आओ आठ पैर पर पिखो नेरा मिटे से अंधेरा सुनो बदे सिर देव सावो मन से नानक बल पावो हालत पलत तो ले सुवार राम नाम अंतर उदार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन मसे साज परीखिया मंत्र नाम ज बोल बिलाए दू दर्द मनते बो जाए सच व्यवहार करो व्यापारी दर गए निवे के तुम्हारी एका टेक रखो मन माए नानक बौर ना आवे जाए तिसते दूर कहा को जाए उबरे राखण आरते आए निरभौ जपे सगल भौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दूख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पोचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक दाके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन भेख दूदर श्रेष्ठ

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए मन न सुरत होए मन बुद्ध मन सगल पवन की शुद्ध।

मन मार्ग ठाक न पाए मन पस प्रगट जाए मन मग न चल पंथ मन धर्म सति संबंध

मन कोय। पंच परवान पंच परदान पंच पावन दर गयमान पंच सोहन दर राजान पंच का गुरु एक ध्यान।

स्वरूपे नमो साह साह नमो पू पूपे नमो दान दान नमो मान मान नमो रोग रोगे नमस्ते शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्रं नमो श्रेष्ठे नमो तंत्र तंत्रं सदा सदानंद सर्वप्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धिदाबृदर्ता परम परम परमेश्वर पुष्पालम सदा सर्वदा सिद्धा दयाल शेदि पेदी नाम काम समस्त उपराजी समस्तम तेरा जोर चाची छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं भेस हैं भजंग प्रजा छंद गादे बादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निधाने नमस्त नराते नमस्तम परमाते नमास्तमा गंजे नमास्तमा पंजे नमास्तमा काले नमास्तमा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाह नमो मामा हे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजीत नमो सर्वपीतं नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे पीजे समस्तम प्रसिजे कृपाल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वधार हृदय सदम नवासी चर पर संत वै प्रसाद आमृत कर्म है विरत धर्म है खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्म दाता सर्म ज्ञाता सर्म भाने सर्म माने सर्म प्राण सर्म त्राण सर्म भुगता सर्म जुगता सर्म देव सर्म भेव सर्म काले सर्म पाले रुआल संत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव पेव आद उदार सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल जतर ततर विराजी अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जा जा करूप रंग न रेख आद पुरख धार मूर्त जौन आद सेख देश न भेजा करूप रेख न राग जतर ततर दिशा सब फैले राग नाम काम हीन पेगता मुँह न जाए सर मन स्वतर मान से मानता एक मूर्त नेक दर्शन की रूपन एक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाने जेद और देव रूप न जात पासो जानी के जेव तात मात्र जात चक्र जन्म मन विहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी प्रतिहीन लोक चौदह के विखे जग जापी जा जाप आ देवनाद मूर्थावे सब थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार आ देवनाद मूर्थाप्य सबे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सरच सुम गण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष भंजन मुखदाय काम आप रूप मेकनो अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंगन आत्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोवृत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दे अनपेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भागत नित

बंदें अपक्तें प्रकतें रासें प्रकाशें चिंतें सुनतें लिखें देखें लिखें पीखें डाहें गाहें समें गमें नीलें नादें अनेतें सुनतें जातें जातें चर प्रशन तो प्रसाद सर्वहंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता अरसावल शंत वाय प्रसाद मो नरक नासे देम बरासे नंगं स्वरूपे पंगं भूते परमात्म परमाते सदा सब साते अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न बोधरे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साक्षरी कै मितो मी कै देव प्रवाहे जय जाय भक्ति संत प्रसाद के जार जहूर के हाजर हजूर है मे सुलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज के रहंद है क्रीमल कमाल है के हुसन जमाल है नीमल खराज है क्रीमल निवाज है हरिवंश कहने हैं रासल कहने हैं कलंकन मनास है समस्त निवास है अगंजल गनीम है जायक रहीम है समस्त जबाह के साहिब करा है के नरकम प्रणास है वैस्त निवास है के सरवल गवन है मेसल रन है तमावल तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अधीश है आदेश लेख है मेसल भेख है जमीन जमा है मी कलमा है क्रीमल कमाल है के जुर जमाल है के अचल प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो बसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग नंग है के मितो अपंग है मदपार शन तो है प्रसाद

परम ततम ततन स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो जुद जुद नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पान नमो कला करता नमो चांद रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाद विभूते

भुजंग प्रजा छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजलनामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचदानंद शतरम प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी जाय विभूते जाय गनी में हरियंग करियंग क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वम स्वम सर्वदा सर्वजुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।

अनंत गुण गजान कसुंदर है राजा हजारे। पोत भविख भवान के पुपत कौन गने नहीं जात विचारे श्री पद श्री भगवान भजे बने अंत को अंत के राम सदारे। तीर्थ नान दे आदम दान संजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कदेव करान जमीन जवान जमीन जमान सबान के देखे पौन आहार जती जतार सब सब चार हजार के देखे।

ब्रह्म ने सर्व संसदी पद अंत बसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपद के प्रसें भक्ति नर फेर न दे तिरेंगे कां प्यो जो दो लोचन मूत के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो।

जिन प्रेम की ओ तनी प्रपायो काउन पान पूजते रहो सर काउन लिंग रे लटकायो काउ लखे और बातचीत सावे काउ बचा को शीश निभायो को बतान को पूजते हैं बस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बतान को पूजते हैं पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे वाच बेनती चौपे अमरी करो हादे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान करो बद पारा हमरे दुष्ट वे दूंगा वो आप दे मोहे जाओ सुखी से मोर परिवार से सिख सवे करतारा मोर छान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आशा दूर बन की रह प्यासा तुम शाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊं सेव सिख मारे तारिया चुन चुन सुधर मारे मारिया आबा दे मुझे उरिय मन काल का त्रास नवरिय जो सदा हमारे बच्चा श्री हद जो करो रक्षा राख लियो मोहे राखण आरे साहे संसाए प्यारे दीन मन दुष्ण के हंता तुमो पुरी सदर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर विष्ण प्रकाश सा सकल काल का किया तमासा जमन काल जो की सबकी यो वेद राज ब्रह्मा जो थी यो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत मनायो देव दैत जशन बजायो आदि अंत कह अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तेजी को हमारी सकल प्रजा ने आप सुवारी शिवकन को सब कौन सो दियो सतरन को बल मोद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी दे कुंजर थूला सब पर कृपा का फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक के पीर पहचाने कड़ कड़ के पड़ पड़ के जाने जबद कर करा करता रा प्रजा धरता दे अपारा जाबिया करख

जस गोविंद दास तुहार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्द उतंगावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकारो करे तेरा कार सब सुवारण सबना गलां समर्थ स्वामी सो क्यों मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही कर तेरे करता तेरे सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहब क्या ना ही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वस्या जेने सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु बिटो जिस दया बड़िया कहे नान सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पन शब्द कर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवस किते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुजिन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तैस गो आतित घर आनंद बाजे साची लिवे बिंदे निमाणी दे निमाणी लिवे बाजो क्या करे विचारिया दुदवास समृत कोय नाए कृपा कर बनवारिया इस नाव और थाओ नाई शब्द लाग सुवारिया कहे नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सच्चे सवारिया कहे नानके ओ आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोए जन पावे पावे तां सो जन दे जिसनु और क्या करे विचारिया एक भरम पूले फिरे दह दिसक नाम ला सुवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कहे नान जिस दे प्यारे सोई जन पावे आओ संत प्यारियो कथ की करा कहानी करा कहानी कथ केरी कि दुआरे पाई है तन मन धन सब सब गुरु को हुक्म मनिये पाई है हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कथियो आ कथ कहानी ए मन चंचला सिधराई किने ना पाया सिधराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोनी जिने भरम भुलाया माया त मोनी तिने कीती दिन ठगोली पाईया कुरबान कीता तिसे विटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचल सिधराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले ए हुकटम तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले साथ तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चलाई है ऐसा कम मूले ना कीचे जे तंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू अवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतु न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या गो आप खाने आखे तां वेखे सब तू है जिन जग तू पाया कहे नान तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन्म खोज दे सो अमृत गुर ते पाया

जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किश करे सो आपे आ स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बिगा बिला बुलावे

हर आपे चगर चुकावे, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जीओ, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरां दी पार बख्शिश रहमत दा सदका, ग्रीनवाज दियां बख्शिशां अमृत वेले तो जो माई भाई सतगुरां दी इलाही बाणी सरवण करदे हो, सतगुरु रहमत करन आप सारिआं दी हाजरी दर प्रवान करन, नरों करो नाम दी दात गुरसिखी जीवन बख्शन। सो आओ अमृत वेले दा सुहावना समान, जिसनों साहिबा ने मोहर लाई है कि अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार,

कारज नाही केत जित दिन दे बिनससी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड खड़ोते खिने माहे जिनस्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे

सारे माई भाई दूर नेड़े गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जो किश करे और रब दे प्यारे कहिंदे जो हो रहा वाहिगुरु परमात्मा तेरे हुक्म अंदर हो रहा है। हर आपे कार कमावे, कार दा हुंदा टहल करनी, सेवा करनी, वो सेवा टहल करके कहिंदे गुरु ने आप ही करवा ली है। हे मेरे मालक जी, डोरी तुहाडे हथ विच है।

कीर्तन कथा दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां धरो करो नाम दान चढ़ती कला दी दाद बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी

सब परिवार विच सुख शांति नाम दियां दातां बख्शनियां किरत कमाईयां विच वादे पाउणे सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग लंगर सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दा सीध प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे

चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे इंद इदासन बैठे देवतियां तरना ले गावे।

न जानी गुरु बाजा हो तत्ते सार न जानी तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहण वहाणी गुर कृपा तेसी जन जागे जिन हर मन वसिया बोला है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो आन दिन हर लिव लागे जागत रहण बिहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मन हो विसारी है मन हो क्यों विसारी है ए वड़दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे ओसनो के पोए न सके जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए कहे नानक के वड़दाता सो क्यों मन हो विसारी है।

उपमा महान। जागत जोत जपै निस बासर ग्रीव निवाज आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। माई भाई आखो आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब।

पहुंचाना क्यों जरूरी हैगा। एंड बार दे साडे ते आके राज कर रहे ने बिकॉज दे नो द वैल्यू एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पंजाब। उन्होंने नजर आता है कि यह सोने की खान और सोने की चिड़ी है। दे वॉन्ट टू रूल पंजाब, दे वॉन्ट टू विन पंजाब एंड वट वी पंजाबी वी सिक्स आर डूइंग दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। संगत जी इतिहास नू जानना यूथ दे लई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास नू जानना बीबिया दे लई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माई भागो जी का इतिहास पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होंगे हैं। ये सारिया चीज़ा जानना इंपॉर्टेंट है, बट इतिहास सिर्फ किताबा तक ना रह जाए, सिर्फ गुरुद्वार तक ना रह जाए, गुरु घर तक ना रह जाए। जब आप इतों बाहर जाते हैं वो वैल्यूज किन्नी आप अपनी जिंदगी दे विच लियांदे हैं। मैं उस एक तबके तो आनी हाँ जिन्हों कहते हैं द मार्जलाइज कम्यूनिटी द एंड फ्रॉम द वेरी बॉटम जो हरारकी है, जिन्हों गुरु साहब ने गल ना लाया और कहा इन गरीब सीखण को द्यों पातशाही याद करो मोरी गुरु आई। और वह लैगेसी जब मैं लैके आई, वह इंपावरमेंट जब मैनू डिग्निटी मान सम्मान साढ़े बजुर्गों गल दे नाल लाया, वह प्यार बख्शिया, वह जब मेहर गुरु साहब की साढ़े ते होई, फिर जब समाज के विच असीं विचरदे आं, अज पंजाब दे विच जब मैं देखदी हाँ कि सवाल करदी हाँ आर वी ट्रूली गोइंग अगेंस्ट जो साडे गुरुआं दीआं सिखलाइयां, वह कोड़ जो जात पात का हंकार साडे विच आ गया है, जो एक्चुअली पंजाब नू विद इन पंजाब डिवाइड कर रहा है, डू वी हैव एनी सोल्यूशन टू इट? क्या साडी वह बाज वाली अख उस साइड हैगी आ? क्या आपां देख रहे हैं कि हुकूमतां किस तरीके दे नाल इस चीज नू एक्चुअली दे विच प्रैक्टिकल लाइफ दे विच इंप्लीमेंट करते हुए साडे विच वंड क्रिएट करी है, साडे विच डिफरेंस क्रिएट कर रही है, सानू धर्मां दे विच वंडिया जा रहा है, साडे लोकां नू भड़का के दूजे पासे लेता जा रहा है। एक कमी दूजियां दी नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड वर्कर हाँ, एक कमी अपनी है। इट इज़ वेरी ईजी टू बिकम अ सिख, इट इज़ वेरी ईजी टू हैव अ टर्बन, दाड़ा प्रकाश करना, बट क्या ये दस्तार जो आप सजाते हाँ ये साड़ी मैचिंग शर्ट और मैचिंग पग सिर्फ कलर ले या? ये रिस्पोंसिबिलिटी नहीं हैगी कि अपने दे विच की हो रहा है, कि आप अपने आप नू सवाल करिए क्या आप उस चीज नू उस वैल्यूज नू लेके आ रहे हैं अपने विच, कि क्यों दूजे साढ़े तो दूर हो रहे ने, क्यों साडा पंथ साड़ी सिखी जिदे लिए इन्ने सैक्रीफाइस होए वो कमजोर हो रहा है। ये सवाल मैं थोड़े सारे दे विच छड़ के जा रही हाँ। ये दर्द जो मैं पंजाब दे विचों इत्थे लैके आई हूँ, जो मैं दिन रात देखती हाँ, जो घुसपैठिए साड़ी कौम दे विच वड़े हुए ने तोड़न लई, अपने आनू अपने तो दूर करन लई, और जो प्रिंसिपल और जो सिद्धांत स्ट्रिक्ट सिद्धांत जिदे विच इफ और बट नहीं है कि मानस की जात सब एक के पहचान वो, कि जब एक का ते एक का वी कान सी एनी बडी कि ये बैंक बैलेंस दे विच किन्ना पैसा, ये किड़ी जात तो आंदा है, इनू गुरुद्वारे साहब दे विच आन देना कि नहीं आन देना। एक मीनस एक यूनिटी, एकता उदे विच ही हैगी, इतफाक उदे विच ही हैगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ी, मैं पीएचडी की, हायर स्टडीज की अपनी यूनिवर्सिटीज दे विचों, जब लोगों को पता चलता है कि ये बच्चे पंजाब तो आके बाद वधिया यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ रहे हैं, मेरे नाल बहुत तशद्दत होया। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजिशन पर पढ़ा रही सी, तो लोगों जो हुकूमत आ जो सोसायटी दे विच ऊंच नीच बने आ, जो अज हुकूमत उत्थे राज कर रही है, उन्होंने ही जो इंस्टीट्यूशन की हैड सी, उन्होंने रास नहीं आया कि किदा एक गरीब समाज तो उठी हुई धी बाहर आके पढ़ती अपने राइट्स ले, ह्यूमन राइट्स ले, गरीबों के राइट्स ले, दलित्स के राइट्स ले लड़ती है, बोलती है, विमेन राइट्स ले बोलती है, और इनू साइड किया जाए। जे इवें दी होर बच्चियां बीबियां तैयार हो जाएगियां तो अपनी हुकूमत खत्म होने के आसार अपन नजर आएंगे। सो दे टारगेटेड मी, उन्होंने मैनु मेरे इंस्टीट्यूशन तो कढ़िया, बट मैं भी हार नहीं मनी, उही फलसफा उही लैगेसी नू कॉन्टीन्यू रखिया कि पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। दैट प्रिंसिपल आई फेल्ट कि मैनू अपने अंदर लेके आना है। आई फॉट टिल एंड, मैं कोशिश की कि जिन्ना भी कर सकती हूँ उन्होंने FIR करवाई। हुण उम्मीद है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाए, इन्ना सौखा नहीं है भारत दे विच लड़ना, और इन्ना सौखा नहीं है कि उत्थे दे कानून उत्थे दा सिस्टम सब पावर अपने हिसाब नाल चलांदी है। तुहानू सारयां नू पता ही है कि साडियां जनरेशन टू जनरेशन खत्म हो जांदियां इंसाफ लई, बट इंसाफ मिलदा नहीं है। सो मैं उस इंसाफ की उड़ीक करदी हाँ, बट इहदा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल

गुरु प्यारी साध संगत, थोड़ा समा जो बख्शिश होया है गुरु दरबार विचों, आओ सारे मन बिरतियां गुरु चरणा नाल जोड़िए। अज एक महान हस्ती परम पूजनीक बंदगी दी मूरत दरगाही महापुरख संत बाबा जी सिंह हंसाली वालियां दे याद विच जन्म दिहाड़े दी खुशी विच गुरु के संगतां याद करके दिन मना रही हैं। आओ श्रद्धा दे फुल असीं भी अर्पण करिए। आओ दो मिनट सिमरन करके मन बिरतियां गुरु चरणा विच लै जाइए, फिर शब्द नाल जुड़दे हैं। सारे कृपा करियो, कोई रसना खाली ना रहे।

भक्त रविदास मंग मंग बड़ी वड्डी आम संसार दे विच जो कि सारे मंगते ने एक दाता सब मंगते सारे मंगते हैं सारे मंगते ने पर मंगन की जाच किसी किसी नूं हुंदी सारिआं नूं मंगना भी नहीं आता कईआं नूं भी नहीं पता मंगना की है मंग गलत कर देंदे हरनाकश ने बड़ी तपस्या की बहुत तपस्या की जदों अकाल पुरख साहब ने प्रगट होए मंग गलत मंग बैठा मंग ये मंग बैठा कि मैं कभी मरा ही नहीं ना अंदर मरा ना बाहर मरा ना दिने मरा ना रात ना मरा ना किसी जानवर को मरा ना किसी शस्त्र देना बाकी ये मंग लिया कि मेरी मौत ही कभी ना हो तो जदा विधान जदा संसार बन गया आया है इस तरह संसार आना जाना ही है एक बंदा जाता दूसरा आ रहा है एक जाता है ये आवन जान एक खेल है उसकी माया है आज्ञाकारी कीनी माया आवन जान एक खेल बनाया ये उदा खेल है करता पुरख का मंग गलत का मंग बैठ इत्थे रविदास कहते मेरा हिरदा खाली है सारा संसार प्रभु दे जहूर दे नाल कुदरत दे नाल भरिया है उदी कुदरत विच आप ही परमात्मा वसदा है कर कृपा वसो मेरे हिरदा है होए सहाई आप असी यह भी शब्द पढ़िया कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी हिरदा खाली है

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए संहाए।

बोध प्रभु के सिमरन जपत पूजा प्रभु के सिमरन बिन सह दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ सुनाने प्रभु के सिमरन दरगाह माने प्रभु के सिमरन हो सो पला प्रभु के सिमरन सुफल पला से सिमरा जिन आप सिमराए नानक ता कहला गोपाए प्रभु का सुमरण सबते ऊंचा प्रभु का सुमरण उदरय ऊंचा प्रभु का सुमरण तृष्णा बुझ जाए प्रभु का सुमरण सब कच सुज जाए प्रभु का सुमरण ना ही जमतरासा प्रभु का सुमरण पूर्ण आसा प्रभु का सुमरण मन के मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसा साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंत प्रभु को सिमर से पतवंत प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से पुरुख प्रदान प्रभु को सिमर से बहुमोताजे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा बनासी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नाने जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमर से परोपकारी प्रभु को सिमर तन सद बलिहारी प्रभु को सिमर से मुख सुहावै प्रभु को सिमर तन सुख बिहावै प्रभु को सिमर तन आत्म जीता प्रभु को सिमर तन निर्मल रीता प्रभु को सिमर तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमर बस हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबहु न चूरै प्रभु के सिमरन हर गुण बाने प्रभु के सिमरन साई समाने प्रभु के सिमरन निश्चल आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन

जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन के सगल आकारा हर सिमरन में आम निरंकारा कर कृपा जिसा बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी

हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप्रव दीना, हर हर जन के ओर सतानी, हर प्रताप जन अवरना जानी, ओत पो जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपाय, हर का पग प्रगट नहीं छपाय।

सबते उत्तम हर की कथा नाम सुरंदर दुख लथा नाम के महिमा संत रुद्रवसाय संत प्रताप द्रुद्र सब नसाय संत का संग बड़ भागी पाई।

धनम निमक निमक से कटाबाय तो पी हो मैं मैल न जाबाय हर के नाम समझर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जबत गत पाहे।

जो ठाकुर ससदा हजूर ता को अंधा जानत दूर जा के टैल पावे दरगा मान सब सारे मुख दया जान।

जाए। जो शरणासु असर कर्मान जो होवन सो दूर परान छोड़ जाए, तिसका स्वरम करे संग सहाय तिस पर हराय।

द्रौपदी देह पर सा छत अमृत खाए तिस्ताकर को राखवन बाहे देह पर सा सुगंध तन लावे तिसको सिमृत परम गत पावे।

जय प्रसाद कार्य पूरा तस जान मन सदा हजूर है। जय प्रसाद तुम पावे सात रे मन मेरे तुताच। जय प्रसाद सबके गोए नानक जाप जपे जब सोए। आप जपाए जपे सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ।

साधक संगमुख उज्जल हो तो सांगमल सगली खो साग संग मिटय अभिमान साग संग प्रकट सुज्ञान साधक संग पूज्य प्रभ नेरा सांग सब होत नबेरा साग संग पाए नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन

भाई सा संग बस गोचर लह साधु के संग अजर सह सा संग बस तानु चय साधु के संग मैल पहुँचाए।

साध संग धर्म राय कर सेवा साधु के संग शुभ सुर देवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधु के संग सर्वस्थान गम नानक साधु के संग सफल जन्म साधु के संग नहीं कद काल दर्शन पेड़ तो होत निहाल साध के संग कलोखत हराय स्वाग संग नरक पर हराय स्वाग संग इहां वहां सोहिला साध संग बिछर तर मेला जो इच्छे सोई पर पावे स्वाग संग ना फिरता जावे पार ब्रह्म साध हृद बसै नानक उदरे साध सुन रसै साध के संग सुनो अर नाओ साध संग अर के गुण गाओ साध के संग नाम अंत बिसराय साध संग सर्पण निस्तराय साध के संग लगे प्रमिठा साधु के संकट गढ़िठा साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नान सा पिटे संजोग साध के मैं भेद न जाने जेता सुनिया ते तब ख्यान है।

ब्रह्म ज्ञानी के कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।

श्लोक उतार जो अंतर नाम शरण में पेख भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानको पर स्वगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या।

क्या आवे ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ हो सब कुछ ले ज्योतिष पावे सोई करे। अनजान विख्या में रचे जे जानते आपने आप बचे, पर मैं भूल दिस्तावे निमक में चार कुंड भरे आवे। कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन्ना मिले, खिन में निज कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज।

स्वलोक सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी।

नहीं मैं तो सनका दुखी को डन लागे सनका दुखी को सब त्यागे सनका दुखी मैं अहंकारी सनका दुखी सदा विकारी सनका दुखी जन्म मरा सनके दुख न छूते डरा सनका दुखी को ना ही ठाव नान सुन पावे तन लय मिलाए सनका दुखी अल बीते टूटे सनका दुखी के ते काज न पहुंचे सनका दुखी को ध्यान परमाइये सनका दुखी उजड़ पाइये सनका दुखी अंतर ते थोता जो सास बिना मृत की लोता संत के दुखी

संत का दुखी विग्रोप हो जाए, संत का दुखी को दरगाह मिले सुधाए, संत का दुखी सुधा सकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजे ना आसवा, संत का दुखी चले निराशा, संत का दुख न

हर बैंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दुर्गा नानक उज्जवल मथावड़ पागे ते जन जग माए सदा सदा हर के गुण गाये राम नाम जो करे विचार से तन मंद गने संसार मन तन मुख बोले हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी।

जिन प्रभु जाता सो सो बावन सकल संसार उदर तन मंत प्रभु के सेवक सकल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण अपे में ले कृपाल गुरु का सब जब भय निहाल उनकी सेवा सो इलाके जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जो पावे विश्राम नानक तिन पुरुको उत्तम करमान जो किस करा सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सबाय हुए सोए करने हर पछाण सोए प्रभु का गया जन मिट लगाना जैसा सत्य सदाना जिस थे जत समाय समाय ओ सुख निदान ओनुहु बन आए आपस को अवधीनो मान नाने प्रभु जने को जान सुलो सर्व कला पर पूर प्रभ बिरता जानन हार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बल हार अष्टपदी टूटे कारण हर गोपाल सर्व दिया पै प्रतिपाल सकल की चिंता जिस माए तिर से वीरता कोई नाए रे मन मेरे सदा हरदा

तावे क्या को कर बे जा सब कुछ दिखा दिया डर बे या सूरा देखो कहावे प्रभु की गला बिना कहता वे देखो हो बह दातार थे देना जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यो गुरु का सोज मने असमन ज्यो पखान नव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तराय

वनस्पति अवनाश ब्रह्मन में राग मन केतु प्रत्याग तथ पर सर्व निरंतर को सोए आपे भिन्न आपे दाना गर्ग वीर्घ ईर्सुदान।

पाए, नाना विध करवंत बनाई, अपने कीमत आप पाए, सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नान करनाओ, नाम के तारे सुगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड।

पावन नाम के संग उदरय सुन सरवन कर कृपा जैसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप साजा का सत्यतान पुरख सद केवल प्रधान करतूत सत साजा के बाणी सत पुरुष सामय सुमाणी सत कर्म जा की रचना।

जिसके सिर स्व करने हार अवर नबोध करत विचार करते किमित न जाने किया नाना ज्योति पावे सुवर्तिया विस्मन विषम पै समाजन बुझे तिस्ताया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुरु के वचन पदार्थ लाए है ओय दाते दो काट नहार जन के संग तरह संसार जन का सेवे सोवड़ पागे जन का

सास हमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर रखे, अपने दा को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गतमत को न लाके, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचे उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नाने सो सेवक दा दिस भगताया, नेके गेरे में कल राखे, बसम कर लश्कर कोट लाखे, जिसका साथ न काटते आप को राख देकर हाथ मान जतन कर्तव्य पास, जिसके कर्तव्य बिरते दात मारण राखे, अब न कोय सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जब नानक प्रभा लाख मिंडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिए पिए, अमृत हो मन तंत्र पिए, नाम रतन जगर को पाया।

का गुण क्या कि न जानो आठ पैर प्रभ सह दूर कौ नाने सही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंत ने अपना तिन जन दे जिन जान अपना प्रभु चत।

सात प्रभु जन जाने सदगुरु तुझका नाओ तुझके संग सिकुदर नानकर गुण गाओ अस्पति सदगुरु सिख कर प्रतिपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल हिरा गुरु वचनी हर नाम उचराय सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकारते हटे सतगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख भागी है सतगुरु सिख हर पल सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समाराय गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे आपस को कर का चना जनावे हर नाम हृदय सत्यावे मन बेच से गुरु के पाथ सेवक के कार्य राज सेवा कर तो ने कामी तिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नाने सो सेवक गुरु की मत ले बीस विषय गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु दूसरे

सचव दे सेवको दे मोहमाय के संगना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगास नाने परम दुख तैते न से तब तुम्हें ठंड वरताये आनंद प्या दुख नाठे पाए जन्म मरण के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेश पहो चुका निरपोह बसे सकल ब्याज मंत्र कह न सह जिसका साधन कृपा तारी सा संगम नाम रारी तित पाए चुके ब्रह्म गमन सुन्नान कर सर्वन निर्गुण अवसर्ग।

उपद्रव्या रूपरंग पै प्रकाशादि संग रच रचना अपने कलतारी अनक बार नानक बलिहारी सुलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सारस्परे संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पासमित विसार चरण कमर दमायर धार करण कारण सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत एहो तन संचो हो भगवंत संजना कर निर्मल मंत एक आस राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाय जिस धन को चार कुंडता में सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख नित बाछ मीत सुख साधु संग परीत जिस बाखो करा भली करनी सासु बाप हर की सरणी अनको बावी रोग न जाए रोग मिट हरे औखद लाए सरवण धान मेरे नाम धान जप नानक दर के परवान मन पर बोध हर के लाए दैद साव ते आ बैठाए ताको बिघन लागे कोय जा कर दैव से हर सोए

जम्बासे तात विचार कह जन साचा जन मर शोका चोका चा वा गुन मिटे प्रभ से वाप त्याग शरण गुर देव रतन जन्म का हुए उदार हर सिमर पुराने उदार इनको पावन छूट नारे सिमर साध वेद विचारे हर के भगत करो।